إن الله

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पहजो शहर पहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ओवर में कुछ वक्त लाइ मौजूद रही हथमी मुहिदे लाइ सठ ॾींहनि जी डेडलाइन मुश्किल नाहे। ईरान सुठो रवैयो रखियो त 300 अरब डिफाल डॉलर फंड ॾींदासीं, जंग जारी रखूं हा त ख़तरनाक स्तारी नतीजा साम्हूं अचनि हा। जॾहिं बि अमुन जी ॻाल्हि कयूं था त स्टॉक मार्केट रॉकेट जीअं मथे अचे थी। ईरान जा मंझंदि थियल पैसा वक़्तु अचण ते वापसि कंदासीं। ईरान मिसबत रवैयो अख़्तियार कयो त पाबंदनि में नरमी थी सघे थी। अमरीकी सदर ट्रंप जी फ्रांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, संदसि चवण हो त ईरान में स्कूल ते हमले बाबति जांच जारी आहे। लबनान मामले ते नेतन्याहू सां इख़्तिलाफ़ आहिनि। इसराइल खे दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे पर बेरुत जूं इमारतूं तबाह करणु ठीकु नाहे। ईरान सां मुआदो न कयूं हा त अबन हुरमुज़ न खुले हा। ईरान में रिजीम चेंज थी चुकी आहे, हाणे त हुते स्मार्ट क़यादत आहे। ईरान एटमी हथियार न ठाहिण ते बि राज़ी थी वियो आहे। ॿिनि महिननि अंदरि मुआदे ते अमल न थियो त ईरान ते ॿीहर बमबारी शुरू कंदासीं। ईरान सां मुआदे में पाकिस्तान ऐं कतर जूं सफ़ारती कोशिशूं साराह जोगियूं आहिनि।

0: अमरीका ईरान सां मफ़ामती यादाशनामे जा 14 नुक़्ता जारी करे छॾिया। अपने हुरमत जी बहाली, ईरान ते लॻल माली पाबंदियुनि में नरमी ऐं एटमी प्रोग्राम बाबति ॻाल्हियूं, लबनान ते समूरनि महाज़नि ते हमला बंदि थियण मफ़ामती यादाशनामे जे नुक़्तनि में शामिल, अमरीका ऐं ईरान जो इक्वे ते हमला रोकण जो अज़म यादाशनामे जे नुक़्तनि में शामिल, ॿिए मुल्क ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़े जी सलामती जो एहतराम कंदा ऐं अंदरूनी मामलनि में मुदाख़िल न कंदा। ॿई मुल्क 60 ॾींहं अंदरि हिकु आख़िरी मुआहिदे ते पहुचण लाइ ॻाल्हियूं कनि। अमरीका फौरी तौर ते ईरान खिलाफ़ पहिरीं नाकाबंदी हटाइण शुरू कंदो, इहो अमल महीने में मुकमल कंदो। जहाज़नि ते अचवञ जंग खां पहिरियां वारी शकल में बहाल कई वेंदी। आत्मी मुआहिदे जे 30 ॾींहनि अंदरि अमरीका पंहिंजी फ़ौजी ईरानी हंधनि मां हटाईंदो। सिंध जे नए माली साल लाइ 3,562 अरब रुपयनि जी बजट पेश, 36 अरब खां वधीक जो खसारो हूंदो। मुलाज़िमनि जी पघार ऐं पेंशन में 7-7 सैकड़ो वाध जो ऐलान, परतनि जो घटि में घटि अजूरो 40,000 मां 43,000 रुपया कयो वियो। 2,75,000 खानदान खे मुफ़्त होम सोलर सिस्टम ॾियण वारी स्कीम मुतारिफ़, सालानी तरक़ियाती बजट में कटौती, तरक़ियाती बजट 1,018 अरब रुपया मां घटाए 980 अरब मुख़्तस करण कई वई। वफ़ाक सां तय थियल मुआहिदे ते तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रुपयनि मां घटाए 400 अरब कयो वियो। गैर तरक़ियाती बजट में 418 अरब रुपयनि जी वाद, बोड़ मुतासिर घरनि जी ॿीहर तामीर लाइ 5.5 अरब, पुठिते पियल तबिके जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ 13.5 अरब रखण जी तजवीज़, बेनज़ीर हारी कार्ड लाइ 2.5 अरब, सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम ऐं पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 2.5 अरब रुपया मुख़्तस। सिंध में 50 करोड़ रुपयनि खां वधीक सैकड़ो सुपर टैक्स लागू, प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रुपया, इंश्योरेंस एजेंट्स ते 2% ऐं इंश्योरेंस ब्रोकर्स ते 3% टैक्स लागू। वॾे वज़ीर सिंध फाइनेंस बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। री इंश्योरेंस सर्विसिस, अदावती सर्विसिस, इंश्योरेंस लीगल सर्विसिस टैक्स कंसल्टेंट्स, रिपेयर सर्विसिस, ब्यूटी ऐं फिज़िकल सर्विसिस टैक्स जे दायरे खां ॿाहिरि। सिंध जी बजट में तालीमी शोबे लाइ 620 अरब ऐं सिहत लाइ 393 अरब रुपया रखण जी तजवीज़, अमनामान जेलनि ऐं पुलिसिंग लाइ 216.537 अरब, कानून ऐं पार्लियामेंटी मामलनि लाइ 27.550 अरब, ज़रात लाइ 33.22 अरब, लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज लाइ 11.6 अरब रखिया विया। आपाशी शोबे लाइ 41.1 अरब, मकानी खाते लाइ 201.39 अरब, इतलात खाते लाइ 7.856 अरब, स्कूल एजुकेशन जे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446.958 अरब रुपया मुख़्तस, कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.214 अरब, यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड लाइ 52.417 अरब ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.18 अरब रखिया विया।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला।
3: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर किड्स।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਕ ਸੜਸਾਂ

अरे जिसको लगा है जान में इश्क़ बुरी बला, ओ जिसको लगा है जान में इश्क़ बुरी बला, ओ इश्क़ बुरी

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: ਸਜਾਮਤਾਂ ਤਮਾਮ ਬੇਅਖਤ
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ते हमला रोकण जो अज़म व यादाश्तनामे जी नुक़्तनि में शामिल भई मुल्क खुद मुख्तियारी इलाक़ाई सलामती जो एहतराम कंदा ऐं अंदरूनी मामलनि में मुदाख़लत न कंदा भई मुल्क 60 ॾींहनि अंदरि हिकु आख़िरी मुआदे ते पहुचण लाइ ॻाल्हियूं कंदा मुआदे ते सही थी वञण खां पोइ अमरीका फौरी तौर ते ईरान ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी हटाइणु शुरू कंदो इहो अमल महीने में मुकमल कंदो जहाज़नि ते अचवञ जंग खां पहिरें वारी शकल में बहाल कई वेंदी हतमी मुआदे जे 30 ॾींहनि अंदरि अमरीका पंहिंजी फ़ौजी ईरानी हदनि मां हटाईंदो

ट्रैफिक असूलनि जी भञगड़ी ते बस मालकुन ख़िलाफ़ ब्रेकडाउन खां अॻु इंतिज़ामिया ट्रांसपोर्टर्स में ॻाल्हियूं नाकाम। ट्रांसपोर्ट पारां अॼु खां हड़ताल शुरू। कराची ट्रांसपोर्ट इतिहाद चवण आहे त ट्रैफिक पुलिस सां ॻाल्हियूं कामयाब न थियूं। अॼु खां हड़ताल कई वई आहे। केतिरनि ई बसनि ते घरा चालान कया विया आहिनि। चालान जी अदायगी लाइ पुलिस ऐं 1 जुलाई खां ब्रेकडाउन शुरू कंदी। फैज़गंज भरिसां बिजली थंभो किरण सबबि बारड़ी फोर्थ गोठ जान मोहम्मद में ट्रक बिजली तारुनि में फासण सबबि थंभो घर में रांदि खेॾंदड़ ॿिनि मासूम भेनरुनि मथां किरी पियो। हादसे सबबि अनम शीनू फोर्थ, महक शीनू ज़ख़्मी।

0: ऐं खिपरो वेझो नाफ़रमान पुट कुहाड़ियुनि जा वार करे पीउ खे क़तलु करे छॾियो। कोटला रखियो भोज़दार में नाफ़रमान पुट ज़हूर पंहिंजे पीउ अहमद बख़्श भोज़दार खे कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तलु कयो। पुलिस ला ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो, जवाबदार फ़रार।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सर मस्त धरती
1: आपको मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं जी, और कॉल करके अपनी पसंद की कोई भी नात, कसीदा या फिर मन कपट सुना के वो उसी टाइम पे प्ले करवा सकते हैं. तो नेक्स्ट कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक जी, मैं भी ठीक हूँ. मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं? कुछ सुनाएंगे हमें? सुना दें.
2: तो किस्मत है
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो.
2: जन्नत में घर मिले
1: और थी. ओके, क्या क्या टाइटल है इस कलाम का?
2: तो खुश किस्मत है.
1: तो खुश किस्मत.
2: हाँ हाँ.
1: किसका है ये? चले मैं इसको देखती हूँ, अगर ये नहीं मिलता तो हम कुछ और प्ले कर देंगे. ठीक है,
2: मेरे दोस्त हैं.
1: हाँ जी. ओके जी, थैंक यू सो मच. और हमेशा हाफिज गुलाम अहमद सावल भाई की आवाज़ जो है ना वो बहुत डिस्टॉर्शन के साथ आती है. तो खैर, 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और इसी के साथ हम नेक्स्ट कलाम की तरफ चलेंगे. और मेरे पास मौजूद है एक खूबसूरत कलाम. अच्छा, मेक श्योर जो आप सुना रहे हो ना, आपको फिर उसका टाइटल और उसका सिंगर बताओ, ठीक है जी, ताकि हम उसको इजीली सर्च कर सके और इजीली वो हमें मिल सके. अगली जी कलाम प्ले करें, कलाम के साथ न्यूज ब्रेक और फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. अगला जो हमारा सेगमेंट होगा दैट इज हरा भरा पाकिस्तान, जिसमें एहतसाम हमारे साथ मौजूद होंगे इस वीक. तो सुनना मत भूलिएगा, ट्यून इन करके रखिएगा. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुजार है.

सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर। KTN अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क।

0: बाएं फैजगंज बरसा बिजली जो थंबो किरण साहब बाड़ी फोत गोड जान मोहन में ट्रक बिजली तार में फासन साहब थंबो घर में रांद थींदड़ ॿिन मासूम भेनरुनि मथां किरी पियो हादसे सबबि अनम शीनो फोत मेक शीनो ज़ख़्मी
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायम
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दिन हर पहर
1: समंदरी आबी हयात के हवाले से हो रही है, उस तरक्की को यकजा किया जाए और दुनिया भर से जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन हैं, उनको एक जगह देखा जाए ताकि उसका फायदा ये हो कि एक कंबाइंड एफर्ट हो चीन के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। एक ऐसा इसको छोटा सा अगर मैं शहर कहूं जिसको हम याजूबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब मैं वहां पहुंचे इस पूरे शहर का एक दरवाजा है और यहाँ के तकरीबन कोई एक से ज्यादा दरवाजों से जब आप दाखिल, तो आपको इसी तरह का माहौल नजर आएगा जहाँ खामोशी होगी और आपको एक तहकीक की जो रूह है और जो एहसास है वो आपको नजर आएगा। पर जो सानिया का शहर वैसे तो टूरिज्म के लिए है, लेकिन साइंस रिसर्च और हवाले का हुआ एक शहर बन रहा है और इसमें ये सेंटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक जदीद साइंसी और तहकीकी मरकज है और इसकी मंसूबा बंदी बहुत अच्छी है। एक जाने पूरा नीला समंदर है क्योंकि साहिल के बिल्कुल साथ है और साथ ही फिर सरसब्ज माहौल भी हमें दिखाई दिया, जिनको देखकर एक पूरे शहर का एक मुकम्मल माहौलियाती है। लोगों से ताल्लुक रखने वाले पूरे रिश्ते हैं, स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो मजदूर आते हैं सब साथ बैठते हैं अपनी अपनी जरूरियात के हवाले से, और फिर जो मंसूबे तकलीफ यकीनन जदीद होता है और बात हमारे सामने आती है। खसूसियत यहाँ समंदरी तहकीक भी है क्योंकि सानिया जो शहर है चीन का, ये जनूबी बहरे चीन के करीब वाक है, इसलिए यहाँ ओशन साइंस के शोबे को खुद दी गई है और यहाँ जो कायम तहकीकी इदारे हैं वो समंदरी वाले से आदि हयात के हवाले से और जो डीप सी टेक्नोलॉजी हैं उन पर तहकीक करते हैं ताकि इस हवाले से भी मजबूत जो है वो बुनियाद हासिल की जा सके। इम्पोर्टेंट चीज जो आगे सुनने की, बहुत कुछ था इस टेक्नोलॉजी सेंटर में, ये बच्चों के था जहाँ हर तरह के बीज दस्तयाब हों, और मैं ये ज़राअत के हवाले, तो ज़राअत चीन के पास नहीं थी, कुछ फल ऐसे थे जो चीन के पास नहीं थे, तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी सेंटर से जो सीड इंपोर्ट किए गए बाहर उन पर रिसर्च हुई और उनकी रिसर्च के साथ साथ इस मिट्टी यानी चीन की मिट्टी के साथ कंबाइन होकर हैं उस पर काम किया गया, और फिर साथ ही जो बीज मंगवाए गए उसका दूसरा मकसद ये था बल्कि हम चीन में खुद ये बीज बनाएंगे और बड़ों के जिस पर हम, और फिर हमें बताया गया से बीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दीगर अफ्रीकन कंट्रीज से भी मंगवाए गए और फिर उनको पैदा किया गया। तो ये इस वक्त चीन में बीज की तहकीक के हवाले से और चीन में को बना से ये एक बहुत में यहाँ और वो सीड बैंक में भर से जितने मंगवा रहे हैं उन वहाँ होना जरूरी है। वो एक जैसे करेंसी बैंक होता है ऐसे ही सीड, और उसकी खासियत ये है कि वो सिर्फ इन बीजों को ये कहना चाहिए कि महफूज नहीं, सिले में बहुत ज्यादा जमा किए जाते हैं एक खास तक वो किसी चीज पर रिसर्च, प्रॉपर ट्रेन फार्मर्स को बुलाया जाता है अगस्त सितंबर में, वो उन लगाते हैं और उस फसल उगती है, फिर रिसर्च आया कि अब आकर देखें कि ये जो फसल हमने उगाई है इसमें दीगर चीजें गजाई जरूरियात कितनी अच्छी हैं और क्या वो लोगों के इस्तेमाल के लिए हैं। फिर साथ ही इस मनसूबे में खलाई और खास तौर पर इस वक्त तो हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से हम सोचें तो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान का खलाई शोबे में चीन के साथ है। हाल ही में दो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको पाकिस्तान से बुलाया गया है, वो यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं। अब वो दो एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट चीन के खलाई जहाज के साथ खलाई मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जाएगा भी, और वो चीन के किसी खलाई प्रोग्राम में पहला शख्स होगा, पहला गैर मुल्की होगा और वो पाकिस्तानी होगा। और दूसरा जो फर्द तरबियत के लिए यहाँ मौजूद है वो यहाँ जो उनका साइंस सेंटर है ग्राउंड पे वहाँ मौजूद रहेगा। तो साइंस के हवाले से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज को जिक्र करने का मकसद ये था आज के पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कई तरह के काम हो रहे हैं मुस्तकबिल और जरूरियात हैं, चाहे वो एक अरब से जायद में हो या इस नंबर्स हैं करोड़ की, अगर हम बात करें तो गजा बहुत जरूरी है और सेंटर्स इस तरह के जदीद

0: नाकिस, ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं कि आप कैसे बिल की पेशबंदी कर सकते हैं। हम गंदम उगाते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करने के वोट कर रहे होते हैं अगर कमी हो जाती है, चावलों का भी यही हाल है, दीगर फसलों का भी यही हाल है, तो इवन चीनी का भी, गन्ने का भी। तो फिर ये जो सेंटर्स हैं बेसिकली ये आपको तैयार करते हैं कि आप कैसे रिसर्च के साथ अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि वो आप कैसे इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर इतना बढ़ाने के बाद की हो सकती हैं। तो बहुत जरूरत स्थान में भी तरह के सेंटर्स की तो नजर आती है, वो एग्रीकल्चर की जो आबी तहकीक है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी है और खलाई तहकीक में भी है। वो किसी भी रिसर्च को कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ते तो फिर मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होगी।
1: ओके जी, एब्तिसाम आप मुझे सुन सकते हैं?
0: जी जी मैं सुन रहा हूँ।
1: ओके जी, तो
0: बस एक चीज जो कि मैंने करेंगे और वो ये कि मैदान में अभी कुछ दिनों मेरा एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ और वहाँ एक सेशन था जिसमें जो पीएचडी स्कॉलर्स थे और जो एमफिल के स्कॉलर्स थे उनको टीचर्स बता रहे थे दाखिला ले लिया है आपका पहला साल आपने करना चाहते हैं, आप जो सोच कर आए हैं पाकिस्तान से कि मैंने ये करें, या आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट क्या है, चीन की मार्केट क्या है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज उन्होंने ये बताई हमें कि अब आपने जो कुछ भी प्लान करना है 2026 में खड़े होकर चीन में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप चीन में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने लिए देखें या यहाँ से नई चीजें सीख कर जाएं, तो चीन में अगले 5 साल के लिए जो कुछ अनाउंस हो चुका है कि हमने बिजली कैसे पैदा करनी है, हमने ज़राअत को कहाँ लेकर जाना है, वो पूरा एक प्लान होता है 5 ईयर्स में। तो उस प्लान के मुताबिक अब आप ये देखें कि आपकी जरूरत कहाँ तक है और आप किन चीजों में आगे जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये करें जो कुछ आप सोच के आए थे कि मैं ये पढ़ूंगा, अब आप वही पढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज जो वहां समझ में आई वो ये थी कि इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे, एकेडेमिया के लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मौजूद थे, और वो ये प्लान कर रहे थे कि आइंदा आने वाले सालों में उनको दिखाए कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप अपॉर्चुनिटी, बल्कि आपने वो सोल्यूशन तमाम मुश्किलात का हल निकालना है जिनको दरपेश है, तो ये सिस्टम आगे बढ़ता है। तो बेसिकली एफर्ट हमें नजर आ रही है, कंबाइंड एफर्ट ये है कि जो रिसर्चर हैं वो अपने इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम ऑब्जर्व करें, उनके साथ इंटीग्रेट करें, ताकि उनको ये मालूम हो कि जब मैं कोई इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा और इसके रिसर्च कर लूं और फिर आपके आइडिया है अब इस पर काम करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच है। पाकिस्तान में सोशल साइंसिस का भी हाल हमारे सामने है कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर रिसर्च बराए नाम रिसर्च है, लेकिन अगर मुल्क में तरक्की करनी है, हमारे मुल्क में तरक्की करनी है और आगे जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज से पूछें कि आपको क्या मसाइल है अगले 5 सालों में, और उन मसाइल को सॉर्ट आउट करके देख के उसको एक जगह रखकर फिर यूनिवर्सिटीज को ये प्रपोजल दें कि ये सेक्टर्स हैं जिनमें हमें काम करना है, आगे जाना है।

0: हमने गंदम इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, हमने गन्ना एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें, राइस एक्सपोर्ट करना है, खासतौर पर पाकिस्तान के फल दुनिया भर में मशहूर है वो एक्सपोर्ट करना है, और फिर कुछ सेक्टर्स को मार्क करके उसके बाद काम किया जाए और जाए कि हम कैसे इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर।
1: ओके जी, और लास्ट में सुनने वालों के लिए कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? इंतजाम
0: बस जनाब, कोई पैगाम क्या देना है, बस ये है कि जो काम भी कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, अपनी पूरी फोकस के साथ करें। हम ये जो सोचते हैं कि वक्त है निकल जाएगा, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, उसको दयानतदारी के साथ और मेहनत के साथ अगर करें तो वही आपका जो वक्त है वो मजीद अच्छा हो जाता है। और अगर आप ये सोचें कि ठीक है काम निकल रहा है बस चलने दो, तो फिर चलने दो में फिर हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मेहनत करना होगा।
1: Obviously, exactly. Thank you so much. एहतिसाम, आप हमारे साथ रहे और अपना कीमती वक्त निकाल के हमें आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आज का सेगमेंट हमारा यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी सेगमेंट में दोबारा एक और गेस्ट के साथ हमारी जो चैट होगी एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ भी जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: मेहरान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।

हेलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और गए जी एक अदद ब्रेक के बाद. और इसके साथ सर जी कॉमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी आते हैं, तो बहुत सारे कॉमेंट और मैसेजेस और साथ में आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. और इसके अलावा जी रिहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं जी एंड मैसेज नहीं सॉरी कमेंट कर रही हैं. सो थैंक यू सो मच रिहाना. और इसके अलावा जी कॉल्स लेते हैं 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स.

0: ओके जी, कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे जी कॉलर कहाँ से हेलो। ओके जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: यार यार की सईद बात कर रहा हूँ, सिंध सोसाइटी सखर से।
0: कैसे हैं सईद भाई, ठीक ठाक?
1: आर जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ जी, प्रोग्राम सुन रहा था अभी आपका, हरा भरा पाकिस्तान सेगमेंट सुना, बड़े शौक से इसका इंतजार होता है मुझे, और एक शाम को और आपको अप्रिशिएट करूंगा इस प्रोग्राम में, जो आप इस प्रोग्राम को दोनों आगे आगे लेकर चल रहे हैं, इसका क्रेडिट आपके पास जा रहा है, आर जी के पास।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यही एप्रिसिएशन आपकी जो है इस सेगमेंट को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है हमें। मुझे ये बताइएगा सईद के और कुछ कहेंगे?
1: जी जी इंशाल्लाह, ये आगे भी आपका ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहेगा। अभी तो मैं पहले की बात करूं तो पहले तो आपको साल डेढ़ साल पीछे जाऊं तो दो दो घंटे आपका इस पे ऊपर प्रोग्राम होते थे। हाँ, पर उसी से ही मैंने एक दो साल पहले ही प्रोग्राम आपके सुनकर, तकरीबन मैंने अपने सिंध सोसाइटी पार्क बनाया हुआ, उसमें पार्क में तकरीबन मैंने 20 दरख्त लगाए हुए हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: ये प्रोग्राम सुनकर आरजी सच बता रहा हूँ।
0: क्या बात है जी, क्या बात है।
1: इसमें मैंने लगाए, आपको बताऊं मैं ये

0: योगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसाना. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का लास्ट में वापस आ चुके हैं जी, लास्ट लिंक में. सो लास्ट लकी कॉलर लेते हैं और चेक करते हैं कॉलर कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाफिज लखमीर भाई, कैसे ही? ठीक ठाक हैं. और लास्ट लकी कॉलर हैं. आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज की अच्छी बात यह है कि मुहर्रम पाक का महीना है कि लोग ये जो है गाने सुनते हैं, साज वगैरह सुनते हैं और फिल्म देखते हैं, गंदी गंदी फिल्म देखते हैं और गंदे गंदे गाने सुनते हैं. देखो कि हजरत इमाम हसन हुसैन ने हमारे दीन की खातिर कुर्बानी की है, ठीक है. वो हमारे दीन की खातिर शहीद हो गए. तो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा मुहर्रम का एहतराम करो और ये जो गंदे गाने और वीडियो और फिल्में जो है ये फिलहाल 10 तारीख तक बंद करो.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज जी, हाफिज लखमीर. और इनके कहने का मतलब ये था कि मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए जी. और बिल्कुल. सो फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट-चैट होती है अब शाम को 7 से लेके 8 बजे तक. इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो सुनना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिप सिंपल पर थिंक हाय. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर, केटीएन नेटवर्क पर, केटीएन
1: जिंदगी है
2: महास
1: फूल खुशबुओं से महकते इस शहर में अब आवाज की सूरत बनी है
2: मीरपुर खास की एक नई पहचान।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटी

0: News.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ओके जी, सो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होने वाला है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएंगे कि मुहर्रम का जो पैगाम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए या फिर सब

इंसानों के लिए बहुत ही एक आसान सा मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है इसका जवाब आप मुझे बताने वाले तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और साथ साथ आप लोगों को बता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भाई यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताए जाते हैं तो वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोगों के खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं आप लोगों के स्किन टाइप के हिसाब से तैयार किए गए हैं मर्द हजरात हो खवातीन हो हर कोई इन्हें इस्तेमाल कर सकता है आराम से इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों जो हैं नेचर शुदा हैं और आप लोग जो हैं आराम से लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयार किए गए हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को पता है कि भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हर तरह का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी टाइप का प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है तो आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको नाइट क्रीम मिल रही है साबुन मिल रहा है फेयरनेस क्रीम मिल रही है और एक्नी ट्यूब मिल रहा है फेस वॉश मिल रहा है और लोशन मिल रहा है हेयर रिमूवल लोशन मिल रहा है इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितने अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो जब आप इस्तेमाल करेंगे जबी तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये प्रोडक्ट जो हैं वो वाकई कमाल के हैं तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03 1575 0595 ये नंबर आपकी आसानी के लिए है आप जल्दी से इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए उनको बताइए कि आप ही लेना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ओके सर आप सो पोस्ट को लाइक और शेयर किया करिए ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोहब्बतें होती हैं तो जल्दी जल्दी से पोस्ट के ऊपर जो है ना वो आइए और पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए अच्छा यहाँ पर हमारे साथ चाचा खालिद जूनी जो प्रोग्राम में मौजूद है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो हाउ आर यू हो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह कहते आई एम फर्स्ट हु वॉचिंग योर शो थैंक यू सो मच चाचा कहते यस्टरडे आई चलेंगे आपने बहुत अच्छा काम कर दिया थैंक यू सो मच और आपको अब मिल जाएंगे क्योंकि इरफान सियाल साहब जो है ना वो अपने वादे के बड़े पक्के हैं और फिरोज अली ब्रोही हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद कहा जाता है आपको और गुलाम रहीम बलूच हमारे साथ कहते सलाम जबरदस्त प्रोग्राम आपका बहुत शुक्रिया जी थैंक यू प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम और आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया वहीद वफाई हमारे साथ मौजूद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्राम जेकब आबाद से आपके साथ है थैंक यू सो मच वहीद वफाई आपको खुश आमदीद कहा जाता है और बिलाल अली कहती है अस्सलाम वालेकुम की आए हो मौला अली फरमाते हैं मोहब्बत करते हो तो इजहार करो बाद में मजबूरी का सहारा लेकर छोड़ देना वफादारी नहीं होती ये तो सही बात है और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है कहते मुझे प्यारी बहन सलाम वालेकुम अस्सलाम मासफा ठीक है ता बता की आयो ठीक ठाक आयो वरियामली जतोई हमारे साथ कहते सिदरा मैं यानी कि हम भी आपके साथ मौजूद हैं इस प्यारे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहा जाता है बरकत रमादानी जमाली बलोच हमारे साथ मौजूद है बलोच जाफराबाद बलोचिस्तान से ओके जी बहुत शुक्रिया आपका भी खुश आमदीद और बिलाल कहते हैं कि अल्लाह उस दिल की मदद फरमाए जो मजबूत होने का दिखावा करता है हालांकि वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है क्या बात है ओके जी और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए अपने होने का एहसास दिलाते जाइए आप हमारे साथ मौजूद हैं हमें पता होना चाहिए और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है ओके जी यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आ हमारा साथ पूरी पूरी देते रहिए और हमारा साथ दीजिए हम जल्दी वापस आते हैं

एच ब्यूटी क्रीम, 5 डे एलोवेरा एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एच ब्यूटी

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम एलोवो टोपिया, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88.8 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत से सवाल बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद भी कहा जाता है। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों की मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है तो वो भी जरा आप लोगों को बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हिसाब से आप लोगों से जो मैंने सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताइए कि मुहर्रम का पैगाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सब इंसानों के लिए। आज आप इस सवाल का मुझे जवाब बताने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है ना, अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो आप मुझे वो भी बताते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी आप लोगों के लिए जो ये एज ब्यूटी ये सारे मार्केट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे डाउट है कि कहीं पर अगर आपको नहीं मिल रहे या फिर आपके सिटी में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके गोठ में ये प्रोडक्ट व्हाइट एज के नहीं मिल रहे, तो आपने बस इस नंबर के ऊपर रापता कर लेना है। और नंबर के ऊपर आप जैसे ही रापता करते हैं तो आपको इजीली जो है ना ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो नंबर है 03 15 799 0595। ये नंबर आप लाजमी डायल करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। जल्दी से आप जो है ना प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए ताकि आप भी परचेज कर सकें और आप भी इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो इस्तेमाल करने की जाने बातें हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीज को इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर आप हम जैसे हमारी सर्दियों में रूटीन रहती ना वो गर्मियों में जो ना थोड़ी अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अक्सर जो होता है ना हमारे चेहरे की स्किन जो है गर्मियों में काफी ज्यादा खराब हो जाती है, ड्राई तो हो ही जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना डलनेस भी काफी ज्यादा आ जाती है, आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम भी हो जाता है। और खास करके जो टीनेजर्स लोग हमें सुन रहे हैं तो उनके चेहरे पर भी अगर एक्नी का बहुत ज्यादा मसला है तो ये जो व्हाइट एज के प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं ना इसमें आप लोगों के लिए हर मसले का हल मौजूद है। अगर आप गर्मियों में ये सोच रहे हैं कि हमने गर्मियों में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और कौन सा प्रोडक्ट गर्मियों में हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है, तो आपके लिए व्हाइट एज लवली क्रीम मैं लेकर आई हूँ। अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये एक फेयरनेस क्रीम है, फेयरनेस फार्मूला है। और अब ऐसे यानी कि बहुत से मेरे मासूम से लिसनर्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भाई फेयरनेस क्रीम क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंस है और नाइट क्रीम में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को ये चीज बताती चलूं कि जब आप फेयरनेस क्रीम, तो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है जैसे आप कोई भी मेकअप लगाना चाहते हैं या फिर अगर ये क्रीम सिर्फ बड़ों के लिए ये तैयार की गई है, क्योंकि ये व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये विटामिन से भरपूर है, क्योंकि इसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल ऐड किए गए जिसमें आप लोगों के लिए विटामिन B3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी भी मौजूद है। और इसके साथ साथ बात यहाँ पर खत्म नहीं होती जनाब, व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है और वो इसलिए ताकि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन हो और आप लोगों को ये जो धूप के असरात है ना जो कि बड़े बुरे असरात आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझा सी जाती है, तो उससे भी आपकी स्किन की जो है ना वो हिफाजत करता है। तो तरीके इस्तेमाल भी यही है कि आपने सुबह या फिर लगाएं या फिर रात को लगाएं या फिर अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो आप वहां

लगा कर जाएं, लेकिन लगाने से पहले आप लाजमी कीजिए एज का फेस वॉश होना चाहिए। सोप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप व्हाइट वॉश इस्तेमाल करेंगे जो कि फुल जो है ना विटामिन सी से तैयार किया गया है। एंड तो इसके अंदर भी जो है बहुत और उसके साथ प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप टीनेजर्स हैं या फिर एज आपकी बढ़ चुकी है लेकिन एक्नी आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मार्केट कहीं और आपको नहीं मिल रहा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो आपको जो नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर आप राबता करके इजीली जो है ना वो अपने तो जल्दी जल्दी से जो है ना आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कर लेना है जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है। आयुर्वेदिक फार्मूला मतलब कि ये नेचुरल अजा से तैयार किया गया है जो कि आप लोगों के चेहरे की ना सिर्फ एक्नी को खत्म करता है बल्कि आपके चेहरे पर अगर एक्नी के निशानात हों या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के बहुत से निशानात जो कि आप रिमूव करना चाहते हैं। आपको छोटी एज में कोई चोट लगी थी जिसका निशान अभी तक आपके चेहरे पर मौजूद है या फिर कोई जलने का निशान है, तो आप वो सारे निशानात को रिमूव कर सकते हैं जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये आपके एक्नी से फाइट करता है बल्कि ये आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करता है और आपकी स्किन को क्लियर बनाता है और आपकी स्किन जो है वो साफ और शफाफ हो जाती है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आप नाम लेकर परचेज कर सकते हैं इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। उसके अलावा इस्तेमाल करने के तरीके कार जो है वो बिल्कुल यही है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सोने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा। हाथों को भी अच्छे से वॉश कीजिएगा क्योंकि आपके हाथ जो है ना वो भी क्लीन होनी चाहिए। जब आपके हाथ क्लीन होते हैं आप अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपके हाथों पर अगर ऐसा है कि आपके हाथ ही क्लीन नहीं है, आपने सिर्फ चेहरा धो लिया है, उसके बाद जो है ना आपके हाथ भी क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो आपके जरासीम होते हैं ना जो आपके फेस तक पहुंचते हैं वो आपके हाथों की मदद से ही पहुंच रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ख्याल रखेंगे तो आप लोगों के चेहरे की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो खूबसूरतियां जो है ना अब मुझे लगता है कि आपकी खूबसूरती आपके हाथ अब आपके लिए वाइट मार्केट में अवेलेबल है। तो हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आराम से, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाते हैं वहां से नाम लेकर पाते हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी सोप है या फिर फेस लोग जो कहते हैं अगर ये चीजों तुम ट्राई करें तो तुम्हें अंदाज़ हो।

आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी आप लोगों के फीडबैक्स हैं, तो आपके फीडबैक्स की जानब आते हैं। फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं हाय हाउ आर यू, सदरा मुस्कान है ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं। और चाचा खालिद कहते हैं महर्रम का फलसफा पूरी इंसानियत के लिए है बेटा, सो योर टॉपिक आंसर ओके। महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू सो मच सर। और फहीम शेख कहते हैं

ओके जी, से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड ई स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जरूर, मार्केट में आपको इजीली मिल रहे हैं, ऐसे अजा से तैयार शुदा है और आप लोगों के ऑल स्किन टाइप के लिए है। जब आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को बेशक बहुत से प्रोडक्ट नजर आते हैं, बहुत से प्रोडक्ट आप परचेज भी करते हैं शायद, लेकिन आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि जो क्रीमें आप लोगों को जल्दबाजी में जो है वो गोरा कर, अगर आप आजकल फार्मूला के चक्कर में पड़ चुके हैं तो इन चीजों से जरा गुरेज कीजिए, क्योंकि जितना आप अपनी स्किन को लाइट फार्मूले देते हैं, लाइट प्रोडक्ट देते हैं, तो उतना ही आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ग्लोइंग रहे तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जाने, और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि फुल नेचुरल अजा से तैयार शुदा है। अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, ये फुल व्हाइट। उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपको इजीली 5 डेज फार्मूला है, अगर आप 5 रातें साथ साथ इसके अंदर भी एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क मौजूद है, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिए।

सो हमारे साथ हैं वरियाम, कहते हैं कि सिद्रा आप सबके साथ बहुत प्यार से चलती हैं प्रोग्राम में, ये शायद कुछ ही लोग बात जानते हैं मानते हैं, बाकी तो लोगों को नहीं लगता ऐसा। बहुत शुक्रिया जी, आप ऐसा समझते हैं, थैंक यू सो मच। दर्दे दिल कहती है कि टॉपिक चंदा सब इंसानों के लिए, ओके। मोहम्मद समान कहते हैं बुआ ओनली आपको सुनने आते हैं, थैंक यू जी आपकी मोहब्बतें। और वासा भाई ठीक है जी, कोई बात नहीं, कल तो जुमा है वैसे भी। चलें कश्यप ठीक है, फिर आपको मैं अपनी पसंद का कसीदा सुनाती हूँ। और सासा जो है ना, आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं पूरी तीन बजे तक, क्योंकि पूरी तीन बजे तक आपका हमारा साथ है जनाब प्रोग्राम में। और प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आप लोगों की प्यारी प्यारी बातें हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा है, यहाँ पर प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल जनाब प्रोग्राम में यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी आप लोगों के पास ही आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी तीन बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: जिए FM 88
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे जिए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

पाकिस्तान जूं कोशिशूं कामयाब, अमरीका ईरान तय थियल मफ़ामत यादाशनामे ते सयूं करे छॾियूं। मफ़ामत यादाशनामे ते हतमी सयूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿिया सालिस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सदर पशकान मफ़ामत यादाशनामे ते सयूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स खां महरूम रखणु मुनासिबु नाहे। तहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान खे ट्रेस

असां ॻाल्हियूं में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटी नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाज़ चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण न आहे हूंदो। जेका गंढ हथ सां खुली सघे उन खे दंदनि सां खुलण जी ज़रूरत न आहे हूंदी। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआहिदे जी भनकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खयां वेंदा। तहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सद लाइ आहे, ख़तमु न थींदो। नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतक़िल थींदो।

वजीर आजम फील्ड मार्शल धुरन के मुहिदे तई पहुंचाइण में अहम किरदार अदा किया। सदरासत जरदारी अमरीका और ईरान में शुरुआती मुहिदे थे की आजियां कदे है तो फेबरवरी में शुरू थियल तकरार खिते समेत समूरी दुनिया के मुतासर किया। उम्मीद है तो बीहर अड़ी सूरत हाल पैदा न थी मुल्क हाँ अवामी मसलन के हल से ध्यान दें।

सदाई बजट में आवाम के रिलीफ ॾियण जी कोशिश कई आहे. मुल्क दिफ़ा ऐं एके ख़ातिर सूबनि वफ़ाक खे पैसा ॾियण जो फ़ैसिलो कयो. सदाई एफ बी आर हदफ़ हासिल नाहे करे सघंदो. एस बी आर जी हसरत हाल बहितर आहे. लॻे थो हलंदड़ साल एफ बी आर हदफ़ हासिल बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त बजट में 300 अरब रुपियनि जी लॻभॻि खसारो आहे, जिन खे वफ़ाक खां 2,263 अरब मिलंदा. सूबाई हदफ़ 456 अरब रखियो वियो आहे. वफ़ाक ऐं सूबनि तय कयो आहे त हर कम आइन मुताबिक़ कंदासीं. मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क जे ख़ातिर वफ़ाक खे सपोर्ट कयो. वफ़ाक खे ग्रांट पैसा पूरा मिलण ई ॾींदासीं.

सिंधा कोर्ट में वकील तौर पेश थियल त कस्टम जे वकील मेयर मुर्तज़ा वाब ते एतराज़ वारे छॾियो। हिकु केस जी ॿुधणी दौरान कस्टम जे वकील चयो त कानून मूजिबि मेयर वकील जी हैसियत में केस करण लाइ पेश नथो थी सघे। जस्टिस नसार बमरो चयो त जंहिं कानून जो हवालो ॾिनो वञे थो उन कानून ते अमल कयूं त अध वकील घर हलिया वेंदा। जस्टिस सलीम जैसर रिमार्क्स ॾिना त केतिरा ई वकील सरकारी नौकरियुनि ज़ाती कारोबार ऐं ॿियनि उहिदनि ते मौजूदु आहिनि। मुर्तज़ा वाब दलील ॾींदे चयो हींअर तौर सिंध हुकूमत खां पघार न वठंदो आहे। सुप्रीम चूंडियल नुमाइंदो वकील जी हैसियत सां हिन जी प्रैक्टिस

बेरापुर में मुबैना तौर से ज़हरीलो खाधो खाने सबब एक घर जा टे भाती फौत पंज ॼणनि जी हालत जोगी ज़हरीलो खाधो खाने सबब ॿिनि वरनि जी नेहा नौजवान इरशाद ऐं एहतिशाम फौत थिया इरफान मलिक हनान साइमा उस्मान समेत ॿिया घंटी जोगी हालत में अस्पताल दाख़िल पुलिस जे अवैध शुरूआती जांच मूजिब नाश्ते में का ज़हरीली शइ खाइण सबब घर भाती फौत ऐं बेहोश थिया आहिनि वधीक जांच कयूं पिया हिन वक़्तु कुझु नथो चई सघिजे बठोर में आबाद कराने

हारन जो गंजबर कैनाल समेत मुख्तलिफ शाखन ऐं वाहन में पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज आबादगारनि लगातार पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो मुज़ाहिरनि चयो त पाणी न मिलण सबबु सारनि जो बेजारो ऐं ॿिया फसल सड़ी रहिया आहिनि पाणी ॾेई फसल बचाया वञनि।

0: बिजली जो थंबो किरण सबब बार में ट्रक की बिजली ताप थंबो कर मता किरी पयो हादसे सबब निगरी अनम शीनू फोत ए मेक जख्मी थी पई हादसे बाद ड्राइवर वाके वरन ता फरार थी गयो पुलिस की जांच जारी।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ॾाढो सुठो
3: GAFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

हाइड्रेट किया गया है तो ये आप लोगों की स्किन को जो है ना वो हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को क्लीन करता है आपकी स्किन को जो है ना वो इतना सॉफ्ट और ग्लोइंग बना देता है कि आप खुद ही कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो वाकई खूबसूरत होती जा रही है तो डी स्किन ब्यूटी ना आप जरूर ट्राई करें डी स्किन फेस वॉश आपको इजीली अब मिल रहा है ये अवेलेबल हो चुके हैं हर जगह पर तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी आप परचेज कीजिएगा और दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिलते जाए ओके जनाब तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप 2-3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करें सुबह दोपहर और रात को आप इस्तेमाल कीजिए अगर आप मजीद एक और जो है ना टाइम ऐड करना चाहते हैं शाम के टाइम या फिर किसी भी टाइम 4-5 मरतबा लगाना चाहते हैं तो 4 मरतबा लगाएं ज्यादा से ज्यादा 5 मरतबा जो है ना या 6 मरतबा इतनी ज्यादा अगर आप टाइम लगाते हैं कोई भी अगर आप सोप लगाते हैं फेस वॉश लगाते हैं तो उसकी जो असल ऐसा होता है ना कि मैं अगर आप लोगों से कहूँ तो सिर्फ 2-4 मरतबा जो ना आप लगाया करें ये ज्यादा जरूरी होता है बाकी बार बार जो लोग फेस वॉश करे होते हैं पानी से फेस वॉश करना तो अच्छी बात होती है लेकिन अगर आप सोप या फिर फेस वॉश का बार बार यूज करते हैं तो आप लोगों की स्किन पर जो है ना वो नेचुरल ऑयल जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएगी आपके चेहरे पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी लोगों की आदत होती है जो कि भाई दिन में 50 मरतबा फेस वॉश करते हैं 50 मरतबा ही साबुन का यूज करते हैं तो उनकी स्किन जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो रूखी सूखी सी लगती है और उनके चेहरे पर रिंकल्स भी काफी जल्दी आ जाते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन की जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे तो आप जो है ना लिमिट के अंदर अपना फेस वॉश किया करें फेस वॉश यानी कि पानी से आप बार बार करें ये अच्छी बात होती है लेकिन अगर आप सोप इस्तेमाल कर रहे हैं फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 3-4 मरतबा जो ना ये ठीक है उसे अगर ज्यादा हो जाता है तब थोड़ा मसला बन जाएगा तो फिर आप जो है ना जब इन चीजों को ध्यान में रखते हैं इन चीजों को आप जो है ना फोकस करते हैं इन चीजों के ऊपर आप अमल करते तब आप लोगों की स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है तो हर एक चीज का एक जो ना वो मिकदार होता है अगर एक चीज को आप मिकदार के अंदर इस्तेमाल करते हैं मिकदार के अंदर खाते हैं जैसे आप खाने के हिसाब से ही ले लें तो अगर आप खाना खाते हैं मिकदार के हिसाब से तो ठीक होता है जब वो ओवरडोज हो जाते हैं तब आपकी बॉडी के लिए नुकसान होता है तो बिल्कुल वैसे ये प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है अगर आप मिकदार के अंदर चीजें ऐड करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा अगर मिकदार से ज्यादा यूज हो जाता है तब थोड़ा आपके लिए टेंशन का बायस बन सकते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें बैलेंस चाहिए तो आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप जो चीजें अपनी स्किन के साथ कर रहे हैं क्या वो बैलेंस के साथ चल रही हैं या फिर ओवरडोज हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि अगर हमने जितने सारे प्रोडक्ट्स से लगा ली स्किन के ऊपर तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता बस आप लाइट वेटेड फार्मूले वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें और थोड़े बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें जो कि आप लोगों की खूबसूरती को निखारते रहें आप लोगों के चेहरे की जो खूबसूरती है उसे बरकरार रख सके उसका ख्याल रखें ये आप लोगों के बस की बात होती है तो जल्दी से अगर आप डी स्किन ब्यूटी डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजीली आपको कहीं भी मिल रही हैं आप जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और साथ साथ 1579905

अच्छा बिलाल अली लिखते हैं कि पूछा गया सब्र कैसे कहते हैं जवाब मिला जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी हो मगर तुम्हारी जुबान पर शिकवा ना हो और दिल उस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है उसी में हमारी बेहतरी है बेशक ओके जी सो आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को शेयर किया करें ताकि भाई सबको पता चले कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं यानी कि अगर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा ऐसा सीन बन रहा है आपकी जिंदगी में कि भाई आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि हमने भी अपने चेहरे का ख्याल रखना है चेहरे का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात होती है चाहे मर्द हज़रात हो चाहे ख्वातीन हो

अपनी खूबसूरती का ख्याल रखें भाई, अगर आप बहुत कुछ नहीं करना चाहते तो थोड़ा कुछ तो कर ही सकते हैं ना, और थोड़े कुछ में आप लोगों के लिए सोप आ रहा है, फेस वॉश आ रहा है, फेयरनेस क्रीम आ रही है, ये चीजें नीड होती है हर एक इंसान की, तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, तो बहुत अच्छे ये जो है ना वो रिजर्व एरिया के अंदर अवेलेबल चाहते हैं, तो उसके लिए आपने डायल करना है 03-15-799-05, ये नंबर आप लास्ट में डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो और आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सके। ओके, इसी के साथ यहां पर टाइम हो जाता है हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपका हमारा साथ पूरी पूरी हमारा साथ दीजिए और जनाब इस्तेमाल करते रहिए व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: यूं ही नहीं जहान में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ है जमाना दा हुसैन का। आप सुन रहे हैं जीएम पोखास एफएम।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी

0: क्रीम असली ग्लो हर नीहं जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ना नाइट क्रीम आप इस रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके साथ साथ अगर आप कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है, जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है. स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन बनाता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है, आपकी स्किन को हमेशा ग्लोइंग बनाए रखता है. तो ये बहुत ही शानदार तरीके से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट्स हैं. अब मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं. तो आप जाइए, आप मालूम कीजिए जरा आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे हैं या फिर नहीं. मिल रहे हैं तो परचेज कीजिए, नहीं मिल रहे तो आपने जो है ना नंबर बताया जा रहा है आपको प्रोग्राम में उसके ऊपर आपने रब्ता करते जाना है. तो ये जनाब बहुत ही आसान से जो है ना वो फार्मूला है कि आप लोगों ने किस तरह जो है इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और किस तरह से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जा रहे हैं. तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से रिजल्ट दे रही है. और दो रातों के इस्तेमाल से रिजल्ट दे रही है वो भी शर्तिया, क्योंकि जनाब ये डॉक्टर्स की तस्दीक शुदा जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं. ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि भाई ऐसे कोई नॉर्मल फार्मूला है, ऐसा कोई सी नहीं है. डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है. और जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, यानी कि वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, कोई क्रीम उनके चेहरे पर सूट नहीं करती है, तो वो लाजमी ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को. आपको यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.

ओके जनाब, और इसी के साथ साथ हम एक और जो है ना वो कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम सुनने वाले हैं मैडम आबदा जी की आवाज में होने वाला है. बहुत ही खूबसूरत कसीदा है और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है तो आप लोगों की फिर अप्लाई करने के बाद जो है ना चेहरे से मुस्कुराहट नहीं रुकती, दूसरे देखकर हमें पागल समझते हैं. इस हालात में हमें ये प्रोडक्ट कैसे यूज करें, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताएं. बिल्कुल जी, इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप जब रात को सोने लगे ना तो उस करें, क्योंकि आप सोएंगे तो आपके साथ आपके घर वाले भी सो चुके होंगे, तो रात के टाइम लगाया करें ताकि आपको कोई देखकर पागल ना कहे. रात के टाइम लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं भाई, आप दिन में क्यों लगा रहे हैं? बाकी अगर आप वाइट एज लवली क्रीम लगाएंगे तो वो तो आपका चेहरा जो है ना वो इतना खूबसूरत कर देगी कि लोग खुद आपको देखकर कहेंगे तभी बुधायो था अॼुकल्ह छा था इस्तेमाल कयो वो तव्हांखे कोई भी जेको आहे न पागल न चवंदो. सो वैसे ही हिकिड़ो बाक़ी जॉक हुयोसि हुनखे जॉक जे तरह ई वठो. बाक़ी वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां राति जे टाइम लॻाइजो, ठीकु आहे? लॻाइण खां पहिरियां फेस वॉश लाज़मी कजो. और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ हैं, कहते हैं मिठो देरो से हमारे साथ मौजूद है. ओके जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है. और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ हैं, कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं? अच्छा, सकरण से आप हमें सुन रहे हैं. अली अकबर ब्रोही भाईजान, आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया. और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं.

अच्छा साइमा मीर हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह प्यारी आरजे सिद्रामस का नाइस प्रोग्राम सफा सही प्यारी अपनी लाइफ में हां बिल्कुल जी ये तो इस बात के ऊपर मैं भी अमल करती हूं और इमरान अली बिरोही भाई कहते हैं बाजी जवाब है सब इंसानों के लिए है ओके और लिखते हैं खून से चिरागे दीन जलाया हुसैन ने रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने खुद को तो एक बूंद भी पानी ना मिल सका मगर करबला को खून पिलाया हुसैन ने ऐसी नज़्म कौन पढ़ेगा जहां जहां में सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने सब्रे हुसैन को मेरा सलाम इमरान अली बिरोही लाड़काना से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई जान और जी उसके अलावा कौन हमारे साथ हैं ये शेर अली फरहान है अली जमाली नवाब शाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं आपको वेलकम कहा जाता है अच्छा मायरा भी हमारे साथ मौजूद है मायरा भी शो में है तो मायरा आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है

ओके जी, दर्दे दिल हमारे साथ हैं और दर्दे दिल लिखती हैं कि हो सकता है कि आपके देखे सारे ख्वाब यूसुफ के कुएं में गिर गए हों, लेकिन यकीन रखो कि अजीज का काफिला जरूर आएगा। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह सुभान व तआला 40 साल बाद हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से ना मिलवाते। बिल्कुल जी, ये एक ऐसी सूरह है ना, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का जो वाकया है, ये मेरा इतना फेवरेट है कि मैं जब भी ऐसा महसूस करती हूं कि मैं शायद उदास हूं या मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी लाइफ काफी ऐसे डाउन चल रही है, तो मैं ये वाकया पढ़ लेती हूं। मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के लिए कितने जिंदगी में वसीले पैदा किए हैं। हमें ये लगता है कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके लिए अगर एक दरवाजा बंद होता है तो उसके बदले आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही, अगर आपको भी लगे कि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा डाउन फील करें, आपको उदासी महसूस हो, तो एक मर्तबा जो है ना सूरह यूसुफ को आप मीनिंग के साथ लाजमी पढ़ के देखिएगा, उससे ही आपको पता चलेगा।

ताकि आपकी जिंदगी जो है ना अगर आप सब्र करते हैं आपके साथ वो सब हो रहा है जो आप नहीं चाहते थे ये सब मेरे साथ ना हो लेकिन वो हो रहा है तो उसका आपको जो है ना अजर बहुत ही अच्छा मिलने वाला है तो बस उम्मीद होनी चाहिए तवक्कुल होना और सब्र होना चाहिए

पीर साधु फ्रामोरो आकाश भाई आपको खुश आमदीद कहा जाता है और चाचा खालिद क्या कहते हैं लास्ट सैडी लिंक, दो घंटे आज के भी गुजर गए, मैं 1:15 पर आपका शो ज्वाइन किया, अब खत्म हो चुका है सैटरडे पर बिल्कुल जी आपको दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे। सो बहुत शुक्रिया चाचा आप हमारे साथ मौजूद रहे पूरे प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। और सनावला बिरोही कहती है अस्सलाम वालेकुम अदीब, कैसी हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप भी हमेशा खुश रहें।

तो पुराने दौर में बेड़ा हलंदा हुआ ऐं सफ़र हूंदो दरियाई त हू सफ़र करे हलिया वेंदा ऐं हुननि जो वञूं हुननि जो भेनरूं इंतज़ारु कंदियूं हुयूं कॾहिं असांजा साॻी अहिड़ा साथीड़ा वरी वतन ते वरंदा उस्ताद बुखारी जो शहर मूंखे यादि अची वियो आहे निशानिया लिथिया में तेकूं उहे न विञावी ख़ैर नाल वेंदा पई वल ख़ैर नाल आवी लड़िया लाड़ वेंदे विसारी न काछा पोवे शल न ते कंहिं पराई दा पाछा उथे खोड़ खोटिया हौसनी मता पेच पावी ख़ैर नाल वेंदा पई वल ख़ैर नाल

ये जिसकी फरमाइश हमें एएम अंसारी ने कर दी, तो बहुत ही खूबसूरत है ये कसीदा, हम सुनेंगे और साथ साथ जो है इजाजत लेने का वक्त भी करीब आ चुका है, तो आप लोगों से इजाजत भी लेंगे। अच्छा चाचा खालिद कहते ऑफ कोर्स कुरान में रूह की बिल्कुल जी, जो लोग अपनी जिंदगी में सुकून तलाश तफसीर के साथ और जरा और बख्तली से आलम हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। मोहम्मद समान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेते हैं। वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात मुझी थियण वारी आहे सैटरडे ते, पंहिंजो इलाही सरो ख़्यालु रखंदा ऐं मूंखे पंहिंजी दुआनि में यादि रखंदा। का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी, जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, जंहिंजी फरमाइश रहिजी वई आहे, या को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो आहे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे, त हुन लाइ माज़रत कयां। मोकलाणी नाहे बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

वज़ीर-आज़म शहबाज़ शरीफ मफादी यादाश्त फौरी तौर से लागू होंगी। ईरान अपने हुर्मस के खोलो ए अमेरिका तेरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दो। पाकिस्तान शरीक सालस कतर की हिमायत से सुबह तय थियल तकरीब की मेजबानी कर दो। सदर ट्रंप के तकरार जो पुरमन हल करण से मुबारक दियण से गुड भेटा पेश कया तो। ईरानी क्यादत के भी अमन लाय कदम खण से सदर की निगाह से ऐसा तो। अमन अमल में कतर सऊदी अरब ए तुर्किया ब मिस्र जो किरदार भी सारा जोगो रो। फील्ड मार्शल सदासम मुनीर की मेहनत किरदार सबब इलाके में इस्तकाम आयो। खेस भेटा पेश कया तो।

मुफ़ामद यादाश्नामे ते सयूं करे छॾियूं। मुफ़ामद यादाश्नामे ते हतमी सयूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं ॿिया सारस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सदर पश्चान मुफ़ामद यादाश्नामे ते सयूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स खां महरूम रखणु मुनासिब न आहे। तेहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मंझ असासनि ताईं बि रसाई हासिल करे सघूं था। सफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत हतमी आहे। असां ॻाल्हियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कारीबाद चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण न आहे हूंदो। जेका गंढ हथ सां खुली सघे उन खे ॾंदनि सां खोलण जी ज़रूरत न आहे हूंदी। ईरानी परॾेही वज़ारत जो तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआहिदे जी भञकड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सदनि लाइ आहे। ख़तम न थींदो, नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतकिल थींदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंगबंदी, हिकु ॿिए जी ख़ुदमुख़्तियारी जो एतराम, अमरीकी बहरी नाकाबंदी जो ख़ात्मो, आबना हुरमज़ जी मुकमल तौर ते बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रुपियनि जो मनसूबो शामिल। मफ़ामती यादाश्नामे मूजिबि ईरान तां अमरीका हतमी मुआहिदे बाद समूरियूं पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो। हतमी मुआहिदे अमरीका पारां ईरान जा मंझंदि कयल असासा बहाल करण वारो उहिदो बि शामिल।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

न जलाया न फूका न दफन किया, मन मरा तो देह अपने आप अट्टी हो गया। खेड़े वालों ने जबरदस्ती की, वारिस शाह मियां हक रांझणे दा खेड़े लै गए जोरों जोर मियां। डोली उठी जैसे बाबुल के दर से जनाजा उठा।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मुख्य

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा चेहरा ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 4:15 PM.
4: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जीबी के कौमी असेंबली ए सेनेट में नुमाइंदगी दियण जो मुतालबो करे छो। आजाद कश्मीर में एहतजाज से वेठलन के एहतजाज खत्म करण ए वापस गादियों करण जो मशवरो। आजाद कश्मीर में थींदड़ चूंडन में हिस्सो वठण जो भी ऐलान। कौमी असेंबली में गालाईंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर के भी नओ मंशूर ए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दियणी पवंदी। आजाद कश्मीर जो मसलो धरणे सा न पर कानून साजी सा हल थींदो। आजाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़ खिलाफ एक्शन करणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियण न ॾींदासीं। माजरनि जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते ख़तम नथियूं करे सघजनि। घणो थियो हाणे एहतजाज ख़तम कयो। एक्शन कमेटी पहिरें मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ अचे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे उन सां कश्मीर काज खे नुक़सान थी रहियो आहे। अमरीकी ऐं ईरानी सदर जी सही बाद वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ बि अमरीका ऐं ईरान में ते थी मुफ़ामती यादाश्ती नामे ते सही करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आला सतह ते मुआदे ते सहियूं थियण बाद साबित आहे त धुरियूं तकरार जी सिफ़ारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मुफ़ामती यादाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान अबन हरमुस खे खोलींदो ऐं अमरीका तेहरान जी बहिर नाकाबंदी ख़तम कंदो। पाकिस्तान शरीक सालिस कतर जी हिमायत सां सुभाणे ते थियल तकरीब जी मेज़बानी कंदो। सदर ट्रंप खे तकरार जो पुरमन हल कढण ते मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते सदर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर सऊदी अरब तुर्किया ऐं मिस्र जो किरदार बि साराह चुको रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबबि इलाइक़े में सकाम आयो। खेसि भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तान जूं कोशिशूं कामयाब। अमरीका ऐं ईरान तय थियल मुफ़ामती यादाश्त नामे ते सहियूं करे छॾियूं। यादाश्त नामा हतमी सहियूं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं ॿिया सालिस मुल्क शरीक थींदा। अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान मुफ़ामती यादाश्त नामे ते सहियूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिसाइल सां महरूम रखणु मुनासिब न आहे। तेहरान जो रवैयो मुस्बत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मुंजमद असासनि ताईं बि रसाई हासिल करे सघे थो। सिफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत हतमी न आहे। असां गालियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद वाकर कारीपाफ चयो आहे त गालियुनि जो मक़सदु झुकण न आहे हूंदो। जेका गंड हथ सां खुली सघे थी उन खे डंदनि सां खोलण जी ज़रूरत न आहे हूंदी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त लबनान

वफ़ाक़ी ॾिनल पैसा वतो न पर आइनी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक़ी टिनि सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं। NFC जे फार्मूले में तब्दीली बि ग़ौर हेठि आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ी राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक़ खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न क़ीमत ज़रूरु अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आइनी हक़ इस्तेमालु कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रुपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ाक़ खां 2,263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ़ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था। निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं। वॾे वज़ीर तब्दीली वारियुनि ख़बरुनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि। ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर नाहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि। चइनी मां मूंखे ख़तरो नाहे। करप्शन जो मसलो मौजूदु आहे। ख़बर पवण ते कारवायूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राबु माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राबु थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देरि असांजी बदक़िस्मती ऐं ठेकेदार जी न हली आहे।

सेनेट नए माली साल जी बजट बाबत 123 सिफारिशन जी मंजूरी रही छी वजीर आजम के स्पोर्ट्स एरिनास ट्रेनिंग सेंटर्स मनसूबे के पीएसडीपी में शामिल न करण की सिफारिश पाकिदान वापार आडो कानून दंडकू खत्म करण तफ्तान बॉर्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण की सिफारिश तरक्याती मनसूबन टैक्स सुधारन औरतन की फलाह माहौलियाती तहफ़ बाबत कदम खण ते जोर भर कासा हजार ट्रांसमिशन लाइन के भी महफूज इलाक में गुजारण की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बल्दिया साने केस जो लिखित में फैसलो जारी कर दहशतगर्दी टोड़ अदालत ए सिंध हाई कोर्ट जो फैसलो करदम करार फैसले मूजिब जवाबदार जुबैर चरिया ए रहमान भोला के शक जो फायदो डींदे बरी कयो वञे तो जवाबदार बिन केसन में घुर्बल नाहन तक खेन आजाद किया वञे

सिंध में पाणी जो बहरान बरकरार, पोखियल फसल सड़न लगा, मुख़्तलिफ़ शहरनि में आपातकारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। वारे तालुके में ज़री पाणीअ जी खोट बदमनी ख़िलाफ़ सवें माण्हुनि जी रैली। नटण उस में धरणो, पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। मीरपुर वटोरो में आपातकारनि ऐं हारियुनि जो गंज बहर केनाल समेत मुख़्तलिफ़ शाखुनि ऐं वाहन में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। जरवार ऐं भर पासे में पाणी खोट ख़िलाफ़ जसकम जो पैदल मार्च। इलाइक़े मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। सन में मांझर तालुके में पाणी खोट ख़िलाफ़ भी हारियुनि एहतजाज कयो। मेहरापुर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि हिकु ई घर जा टे भाती फोत, पंज ॼणनि जी हालत ॻणती जोगी। ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि ॿिनि वरियनि जी नेहा मलिक नौजवान समेत ॿिया ॻणती जोगी हालत में अस्पताल दाख़िल। पुलिस चयो आहे त शुरूआती जांच मूजिब नाश्ते में का ज़हरीली शइ खाइण सबबि घर भाती फोत ऐं बेहोश थिया आहिनि। वधीक जांच जारी आहे, हिन वक़्तु कुझु चई नथो सघिजे। खिपरो वेझो नाफ़रमान पुटनि निंड सुतल पीरसन पीउ खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल करे छॾियो। घोट लाइ रखियो बोज़दार में ज़हूर ऐं अनवर बख़्श बोज़दार पीरसन वालिद अहमद बख़्श खे क़तल कयो। पुलिस मूजिबि ॿई भाइर पीउ खे क़तल करण बाद फरार थी विया आहिनि। पुलजी वेझो बि हथियारबंदनि हथां होटल ते वेठल घुटाणो क़तल। पाठ शरीफ़ में होटल ॿाहिरां बेंच ते वेठल नौजवान उस्मान उर्फ़ ॾाॾो चांडियो खे हथियारबंद क़तल करण बाद फरार थी विया। दादू जे मसण रोड तां नौजवान सदाम मल्ला जो लाश हथ। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि नौजवान जो मङणो थियल हो। मङणी टुटण ते नौजवान आबकार कयो आहे। पुलिस चयो आहे त वाक़िए जी जांच जारी आहे। रोड भरिसां पठान लाका बिरादरी ऐं मीरजत दुर में चिकताण वधी वई। पसंद पड़ो कंदड़ नौजवान जे वारिसनि जो लाका दुर ते ॻोठ मथां हमिलो करे फुर लुट करण जो इल्ज़ाम। मुराद मीरजत वासी ॻोठाणनि जो हमले ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठाणनि मूजिबि तहफ़ुज़ फराहम करे इंसाफ़ कयो वञे। कंदकोट में 44 खां वधीक ॾुहारी हथियार पिटा करे पुलिस आॾो पेश। ॾुहारी फ़क़ीर अली हसन शेख, फैस मोहम्मद सुंदराणी, जीवन मलिक ऐं सईदू बोलू बि शामिल। पुलिस मूजिबि ॾुहारी फ़क़ीर अली हसन शेख मथां 50 लख इनाम रखियल हो। ॾुहारियुनि मथां अख़वाफ़ुर धाड़नि ऐं मुक़ाबलनि जा केस दाख़िल हुया। ॾुहारियुनि खे जेल मोकिलियो वियो। खिपरो जे मॉडल कोट चोटियारो में तशदुद जो निशानो बणियल चाद बानो मल्ला जी मुबैना अख़वाब। तशदुद ऐं ज़्यादती वारे केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। केस में वज़ीर राजर डो साबित न थियण ते बरी। मुतासिर नारी शाद बानो मल्ला ऐं संदसि माउ पारां बयान तब्दील करण बाद जवाबदार खे अदालत बरी कयो। ज़रियुनि मूजिबि जो हिकु महीने अॼुणे जिरगे ज़रिए फ़ैसिलो थियो हो, जंहिं बाद नारी ऐं संदसि माउ कोर्ट में बयान तब्दील कयो हो। उमरकोट ज़िले में पुलिस मोबाइल अंदर चर्स जो सिगरेट ठाहींदड़ वजणा गिरफ़्तार। नौजवान अबू बकर ऐं रोशन ते चर्स रखण जो केस बि दाख़िल। SSP उमरकोट चयो आहे त वीडियो वायरल में नज़र ईंदड़ ॿई जवाबदार गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। जवाबदारनि वटां चर्स बि मिलियो आहे। वधीक जांच जारी आहे।

0: आई शानदार कैरियर मौकियों पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरण नवाब शाते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कई वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोला में आहे जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फौरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
1: सुनते रहो GAFM 90.8

मर्तबा सबसे अलग सारे नबियों में है उनका।

وصف آقا کے اور ان کی آل کے لکھو ندیم, وصف آقا

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार करियर मौके पेश कर वने थो GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्त तलब कई वने थियो GFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे ए इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जय वक्त भी पहेजे।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरानी सदर पसिक्यान वफावती यादाश नामे ते सहयूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का महरूम रखण मुनासिब न आहे। तेहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान के 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मुंजमिद असासनि ताईं रसाई बि हासिल करे सघे थो। सिफारती अमल लाइ 60 ॾींहनि जी मुदत हतमी न आहे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जीबी के कौमी असेंबली ए सेनेट की नुमाइंदगी देने जो मुतालबो करे छो। आजाद कश्मीर में मुजाहिन के एहतजाज खत्म करण ए वापस गालियों करण जो मशवरो। आजाद कश्मीर में थींदड़ चूंडन में हिस्सो वठण जो भी ऐलान। कौमी असेंबली में खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी चयो आहे त आजाद कश्मीर के भी नओ मंशूर ए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देनी पवंदी। आजाद कश्मीर जो मसलो धरणे सां न पर कानून साजी सां हल थींदो। आजाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़ खिलाफ़ एक्शन खणणो पवंदो। असां आजाद कश्मीर के वधीक नुकसान थियण न ॾींदासीं। मुहाजरन जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते ख़त्म नथियूं करे सघजनि। घणो थियो हाणे एहतजाज ख़त्म कयो। एक्शन कमेटी पहिरें मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे हुन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए थो। असां गालियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाग चयो आहे त गालियुनि जो मक़सदु झुकणु नाहे हूंदो। जेका गंढ हथ सां खुली सघे थी उन खे डंदनि सां खोलण जी ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी मुआदे जी भेदखड़ी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मक़सदनि लाइ आहे, ख़तम न थींदो। नई रचायल यूरेनियम कंहिं ॿिए मुल्क मुंतक़िल थींदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंग बंदी। हिकु ॿिए जी ख़ुदमुख़्तारी जो एतराम। अमरीकी पहिरीं नाकाबंदी जो ख़ात्मो। अबना हरमुज़ जी मुकमल तौर बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रुपियनि जो मनसूबो बि शामिल। वफ़ामती यादाश नामे मूजिबि ईरान तां अमरीका हतमी मुआदे बाद समूरियूं पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो। हतमी मुआदे ताईं ईरान जो एटमी प्रोग्राम मुंजमिद रहंदो। मतन में अमरीका पारां ईरान जा मुंजमिद कयल असासा बहाल करण वारो अहद बि शामिल। मुआदे जी निगरानी लाइ मैकेनिज़्म जोड़ण ऐं सलामती काउंसिल जी मंज़ूरी वारा नुक़्ता बि शामिल। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल धूरियन खे मुआदे ताईं पहुचाइण में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी अमरीका ऐं ईरान में शुरूआती मुआदो थियण जी आजियां कंदे चयो आहे त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार ख़ते सबबि समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। उमीद आहे त ॿीहर अहिड़ी सूरतयाल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾींदा। वफ़ाक खे ॾिनल पैसा भतो न पर आइनी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक खे 3 सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं। NFC जे फार्मूला में तब्दीली बि हो रेट आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ी राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न का क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आइनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रुपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंध के वफ़ाक़ खां 2,263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ़ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था। निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं। वॾे वज़ीर तब्दीली वारियुनि ख़बरनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि। ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर न आहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि। चइनी मां मूंखे ख़तरो न आहे। करप्शन जो मसलो मौजूदु आहे। ख़बर पवण ते कारवायूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राबु माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राबु थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देरि असांजी बदक़िस्मती ऐं ठेकेदार जी नाअहली आहे।

सेनेट नए माली साल जी बजट बाबत 123 सिफारिशन जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म जे स्पोर्ट एरिनाज ऐं टेनिक सेंटर्स मनसूबे खे PSDP में शामिल न करण जी सिफारिश। पाक ईरान वापार आॾो कानूनी रंडकूं ख़तम करण ऐं दफ़्तान बार्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण जी सिफारिश। तरक़ियाती मनसूबनि, टैक्स सुधारनि, औरतुनि जी फलाह ऐं माहौलियाती तहफ़ुज़ बाबति क़दम खणण ते ज़ोर भरियो। कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन खे बि महफ़ूज़ इलाइक़नि मां गुज़रण जी सिफारिश।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: FM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्त तलब कयो वने थियो जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आ है देर न करियो अभी अप्लाई करियो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तो तलब कई वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: उठी तरस तड़ियाई वगोनी गरजो उठी तरस तड़ियाई वगोनी गरजो पांजे नढड़े अदे ये अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी गर जो पांजे नढड़े अदे ये अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाए तुझे उठ दाऊ करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खणी तुझे उठ दे अदा करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खणी शल तो खे बिडे रब उम्र घणी जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल बर जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी गर जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाए वनी पहुंचंदे जाते वञणो थई मुझी कयल सदा खे मञणो थई वनी पहुंचंदे जाते वञणो थई मुझी कयल सदा खे मञणो थई वनी लाज़िम गोले लहणो थई तू त वाकुफ़ आही उन दग जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी गर जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाए चयो ओठिया पुट अहवाल तडस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठिया पुट अहवाल तडस बाबा बाबा करे करी कान

हर हर जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाए चयो साइन सुगरा नामो अथम अबो पाक हुसैन इमामो अथम चयो साइन सुगरा नामो अथम अबो पाक हुसैन इमामो अथम।

0: जो ओठी तरस तड्याए वगोनी गर जो ओठी तरस तड्याए वगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड्याए लफ्ज बचड़ी जा जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोन लगो लफ्ज बचड़ी जा जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोन लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस तड्याए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड्याए कयों हेडा कशां लाकन जे करे जग खलको खुदावंद जन जे करे कयों हेडा कशां लाकन जे करे जग खलको खुदावंद जन जे करे बेड़ो तरंदो महशर में तन जे करे हिन गुलाम नबीअ महेसर जो ओठी तरस तड्याए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड्याए ओठी तरस तड्याए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड्याए
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: और आप देख रहे हैं कि वो जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं चट्टी नहीं दू, चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक दिया है। तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करना है, आईन के दायरे में रह के करना है।
1: वफाक के ॾिनल पैसा चट्टी न पर आईनी ज़िमेवारी आहे। वफाक खे 3 सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं। NFC जे फार्मूले में तब्दीली बि हो रेठा आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर वाद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का न का क़ीमत ज़रूरु अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आईनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रुपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ाक खां 2,263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारो मदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं।
0: पता नहीं है कि क्या क्यों बातें, मैंने ये कहा था नहीं 10 साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने वोट उठाया था जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। और ये बातें जरूर आप लोग करेंगे ना यार, इसके बगैर है क्या जिंदगी में मजा? तो मुझे नहीं, हकीकतन नहीं पता, ठीक है। मुझे उस दिन कहा गया था, कुछ नाम लिए गए, मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही टीज कर दिया, इसलिए कि जो 4 नाम उन्होंने लिए थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जियाला अपनी लीडरशिप के, तो वो ऐसी बात नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे का करते जिससे मुझे खतरा हो, मैं शायद करते इनसे कोई खतरा नहीं है।
1: बड़े वज़ीर तब्दीली वारियुनि ख़बरुनि खे अफ़वाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि, ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर न आहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि, चइनी मां मूंखे ख़तरो न आहे। करप्शन जो मसइलो मौजूदु आहे, ख़बर पवण ते कारवायूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राब माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देरि असांजी बदक़िस्मती ऐं ठेकेदार जी नाअहली आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो स्विट्ज़रलैंड वारो दौरो मुलतवी। सफारती ज़रिए मौजूद वज़ीर आज़म खे स्विट्ज़रलैंड वञणो हो, पर हाणे इहो दौरो मुलतवी कयो वियो आहे। ईरान अमरीका मफ़ामती यादाशनामे ते सहीन खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान विच में पहिरियों भेरो राब्तो। वज़ीर आज़म हाउस जी पथराई मूजिब ॿिन्ही अॻवाणनि विच में 30 मिंटनि ताईं ॻाल्हि ॿोल जारी रही। वज़ीर आज़म अमन माहिदे ते ईरान जे सही करण वारे फ़ैसिले जी साराह कंदे चयो त ही तारीख़ी माहिदो ख़िते में अमन जे क़याम ऐं ईरानी क़ौम जे नए सिर जोड़जक में मददगार साबित थींदो। ईरानी सदर अमन माहिदे में किरदार अदा करण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जा थोरा मञिया। अमरीका ऐं ईरान जे सदर खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश नामे ते सही करे छॾी। वज़ीर आज़म चयो आहे त आला सतह ते माहिदे ते सहियूं थियण मां साबित आहे त दुरियूं तकरार जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मफ़ामती यादाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान अपने हर्मुज़ खे खोलींदो ऐं अमरीका बहिरी नाकाबंदी ख़तमु कंदो। तकरार जो पुरअमन हल कढण ते सदर ट्रंप खे मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ कदम खणण ते कदर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्की ऐं मिस्र जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। फील्ड मार्शल ज़ैद आसिम मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबबि इलाइक़े में इस्तक़ाम आयो। पाकिस्तान जूं कोशिशूं रंग लाथो। अमरीका ऐं ईरान तय थियल मफ़ामती यादाश नामे ते सहियूं करे छॾियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में ऐं ईरानी सदर पज़ेशकियान तेहरान में मफ़ामती यादाश नामे ते इलेक्ट्रॉनिक सहियूं कयूं। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे बैलिस्टिक मिसाइल सां महरूम रखण मुनासिब नाहे। तेहरान जो रवैयो मस्बत रहियो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फंडिंग ताईं रसाई हासिल थी सघे थी। ईरान जा मुंजिमिंद असासन ताईं बि रसाई हासिल करे सघे थो। असा गाल में फौजी कार्रवाई का हासिल किया है। हासिल कल कामयाबी के फौजी कार्रवाई से भेटे न तो सकते। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ है गाल मकसद झुकण ना हों जहां गंड हद से खुली सके थी उन्हीं के डंदन से खोलने की जरूरत ना होंगी। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकई है लबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी माहिरे की बदकड़ी है। इसराइल लबनान से कब्जो जारी रखो तो जरूरी कदम खया वा। तेहरान जो एटमी प्रोग्राम पुरमन मकसद लाए है खत्म न थो नई रचायल यूरेनियम के बे मुल्क मुंतकिल। लबनान समेत समूरन माजन से जंगबंदी एक वे की खुदमुख्तारी जो एतराम अमरीकी पहरी डाकाबंदी जो खात्मो अबना हर मुर्ज मुकम्मल तौर बहाली। ईरान ए अमरीका में तय थियल 14 नुकता सामू अची व्या। ईरान की नए सिर तावीर लाए 300 अरब रुपये जो मनसूबो भी शामिल। मफामती यादाश्तनामे मूजिब ईरान ता अमरीका हतमी माहिदे बाद समूरियों पाबंदी हटाई। तेहरान एटमी हथियार न ठाई हतमी माहिदे ताई ईरान जो एटमी प्रोग्राम मुंजमद रहो। वतन में अमरीका पारा ईरान जहां मुंजमद कल असासा बहाल करो अहद भी शामिल। माहिदे की निगरानी लाए मेकेनिज्म जोड़ ए सलामती काउंसिल की मंजूरी वारा नुकता भी शामिल। वज़ीर आज़म ए फील्ड मार्शल धुरियन के मुआरे ताई पहुंचाने में अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली जरदारी अमरीका ए ईरान में शुरुआती माहिदो थियण की आजिया कंदे चयो आहे त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार खित्ते समेत समूरी दुनिया के मुतासिर कयो। उम्मीद आहे बीहर अहिड़ी सूरतयाल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसलन जे हल ते ध्यान ॾींदा। सेनेट नए माली साल की बजट बाबत 123 सिफारिशन की मंजूरी दई छी। वज़ीर आज़म के स्पोर्ट्स एरिनाज ए टेनिक सेंटर्स मनसूबे के PSDP में शामिल न करण की सिफारिश। पाक ईरान व्यापार आडो कानूनी रंड को खत्म करण ए तफ्तान बॉर्डर से इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण की सिफारिश। तरक्याती मनसूबन टैक्स सुधारन औरतन की फलाह ए माहौलियाती तहफ़ बाबत कदम खण से जोर भर। कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन के भी महफूज इलाक में गुजारण की सिफारिश। सिंध में पानी की शदीद कोट ए बदमनी खिलाफ़ मुख्तलिफ़ फेरन में एहतजाजी मुजाहरा। वारे तालुके में ज़री पानी की कोट ए बदमनी खिलाफ़ समे माण्हुनि एहतजाजी रैली कढ़ी नटण उस में धरणो हयो। कोरबा में अवामी तहरीक के मरकजी सड से सिंध में पानी के अतरादू खोट इम्कानी अठाई तरमीम न्याणियों के कतलाम महंगाई ए मनशियात खिलाफ रैली। जरवार ए भरपासे में पानी कोट खिलाफ जस्कम जो पैदल मार्च। मीरपुर बटोरो ए मांझर तालुके में पानी कोट खिलाफ एहतजाज कयो। मेरापुर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाण सबब एक ही घर जा टे भाती पौत। पंज जणन की हालत घटी जोगी। जहरीलो खाधो खाण सबब बिन वरियन की नेहा मलिक नौजवान इशाद एहतशाम फौत थिया। इरफान मलिक हनान साइमा उस्मान समेत बया घटती जोगी हालत में अस्पताल दाखिल। पुलिस है तो शुरुआती जांच मूजिब नाश्ते में का जहरीली शय खाण सबब गर्भाती पौत ए बेहोश थे। जांच जारी है इन वक्त कुछ चई न तो सके। कंदकोट में 44 का डोहारी हथियार फिटा करे पुलिस आडो पेश। डोहारी फकीर अली हसन शेख फेस मोहम्मद सुंदरानी जीवन मलिक ए सईदू गोलू भी शामिल। पुलिस मूजिब डोहारी फकीर अली हसन शेख मथा 50 लख इनाम रखल हो। डोहारियन मथा अगवा पुर धाड़न ए मुकाबलन जा केस दाखिल हुआ। डोहारियन के जेल मोकलो वो। कराची में गिरफ्तार थियल मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के केस में अहम अगवर आई। पुलिस बिन राइडर्स के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस जो चवण है त गिरफ्तार राइडर्स पिंकी गैंग लाए कम कंदा हुआ। बिन्हीं के बोट बेसन वाले इलाके में गिरफ्तार कयो वियो। किप्रो की बाडल कोट चोटियारियों में तशद जो निशानो बढ़ल शादबानो मल्ला के मुबैन अगवा तशद ए ज्यादती वे केस जो फैसलो बुधाए छो। केस में नामजद जवाबदार वजीर ताजर डो साबित न थियण से वरी मुतासिर नारी शादबानो मल्ला ए संदस माओ पारा बयान तब्दील कर बात जवाबदार के अदालत वरी कयो। जरियन मूजिब मशहूर केस जो एक महीनो अग राजूणी जरके जरिए फैसलो थो हो जै बाद नारी ए संदस माओ कोर्ट में बयान तब्दील कयो हो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीए एफएम 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरण नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

पाकिस्तान जी कोशिशन रंग लाथो, अमरीका ईरान तय थियल मफ़ामती यादाश्तनामे ते सहियूं करे छडियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ भी सारे तौर तारीखी मफ़ामती यादाश्तनामे ते सही कई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस ए ईरानी सदर पसिकियान तेहरान में मफ़ामती यादाश्तनामे ते इलेक्ट्रॉनिक सहियूं कयूं। अमरीकी ए ईरानी सदर का पोए वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सादिसी हैसियत में मफ़ामती यादाश्त ते सही करे छडी। वज़ीर आज़म चयो आहे त आला सतह ते माहिदे ते सहियूं थियण मां साबित आहे त धुरियूं तकरार जे सिफारती हल लाइ पुरअज़म आहिनि। मफ़ामती यादाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान अपना हुर्मुज़ खे खोलींदो ऐं अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़तम कंदो। तकरार जो पुरअमन हल कढण ते सदर ट्रंप खे मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते क़दर जी निगाह सां ॾिसां थो। अमन अमल में क़तर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्र जो किरदार बि सारा चोगो रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबब इलाइक़े में इस्तक़ाम आयो। मफ़ामती यादाश्त नामे ते सही आहिनि खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ईरानी सदर मसूद पेशिकियान विच में पहिरियों भेरो राब्तो। वज़ीर आज़म हाउस जी पधराई मूजिब ॿिन्ही अॻवाननि विच में 30 मिंटनि ताईं ॻाल्हि ॿोल जारी रही। वज़ीर आज़म अमन माहिदे ते ईरान जे सही करण वारे फ़ैसिले जी साराह कंदे चयो त हीउ तारीख़ी माहिदो ख़िते में अमन जे क़याम ऐं ईरानी क़ौम जे नए सिर जोड़जक में मददगार साबित थींदो। ईरानी सदर अमन माहिदे में किरदार अदा करण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जा थोरा मञिया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो स्विट्ज़रलैंड वारो दौरो मुलतवी। सिफारती ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म खे स्विट्ज़रलैंड वञणो हो, पर हाणे इहो दौरो मुलतवी कयो वियो आहे। असां ॻाल्हियुनि में फ़ौजी कार्रवाई खां वधीक हासिल कयो आहे। हासिल कयल कामयाबी खे फ़ौजी कार्रवाई सां भेटे नथो सघिजे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु झुकण नाहे हूंदो। जेका ॻंढ हथ सां खुली सघे थी, इन खे ॾंदनि सां खोलण जी ज़रूरत नाहे हूंदी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त लबनान में इसराइली फ़ौज जी मौजूदगी माहिदे जी बरकरी आहे। इसराइल लबनान ते कब्ज़ो जारी रखियो त ज़रूरी क़दम खया वेंदा। तेहरान जो प्रोग्राम पुरअमन मक़सदनि लाइ आहे, ख़तम न थींदो। नई रचायल यूरेनियम खे ॿिए मुल्क मुंतकिल थींदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंग बंदी, हिक ॿिए जी ख़ुदमुख़्तारी जो एतराम, अमरीकी बहरी नाकाबंदी जो ख़ात्मो, आपना हुर्मुज़ जी मुकमल तौर बहाली। ईरान ऐं अमरीका में तय थियल 14 नुक़्ता साम्हूं अची विया। ईरान जे नए सिर तामीर लाइ 300 अरब रुपियनि जो मनसूबो बि शामिल। मफ़ामती यादाश्तनामे मूजिबि ईरान तां अमरीका हतमी माहिदे बाद समूरियूं पाबंदियूं हटाईंदो। तेहरान एटमी हथियार न ठाहींदो, हतमी माहिदे ताईं ईरान जो एटमी प्रोग्राम मुंजमिद रहंदो। मतन में अमरीका पारां ईरान जा मुंजमिद कयल असासा बहाल करण वारो अहद बि शामिल। माहिदे जी निगरानी लाइ मैकेनिज़्म जोड़ण ऐं सलामती काउंसिल जी मंज़ूरी वारा नुक़्ता बि शामिल।

वजीर आजम आई फील्ड मार्शल धुरियन के मायदे तई अमेरिका ईरान में शुरुआती माहदो थे आजिया कदे है फेबरवरी में शुरू थियल तकरार खिते समेत समूरी दुनिया के मुतासर किया उम्मीद है बीहर अड़ी सूरत पैदा नी मुल्क हाँ अवामी मसलन के हल से ध्यान दींदा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के कौमी असेंबली ए सेनेट में नुमाइंदगी देने जो मुतालबो कर छो। आजाद कश्मीर में मुजाहिन के एहतजाज खत्म करने ए वापस गालियों करने जो मशवरो। आजाद कश्मीर में थींदड़ चूंडन में हिस्सो वटण जो भी ऐलान। कौमी असेंबली में खिताब कदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है आजाद कश्मीर के भी नव मंशूर ए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देनी पवंदी। आजाद कश्मीर जो मसलो धरने से न पर कानून साजी से हल। आजाद कश्मीर में कानून हथ में खड़ंदड़ खिलाफ एक्शन करण पवो। अस आजाद कश्मीर के नुकसान थियण न ींदी। मुआजरन जो सीटू बंदूक के जोर से खत्म नथियों कर सकजन घणो थो हाँ एहतजाज खत्म कर एक्शन कमेटी पहरे मुआदे से अमल करे चूंडन तरफ वे। आजाद कश्मीर में जो कुछ थी रो है उन कश्मीर काज के नुकसान थे पो। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से पीपल्स पार्टी ए नून लीग में तफाक थी वो। पीपल्स पार्टी अगवान नवीद कमर है गिलगित जो वो वजीर जियालो हों गवर्नर ए डिप्टी स्पीकर नून लीग जो हों। हुकूमत साजी के मामलों से नून लीग से इतफाक है। बी अग नून लीग वफद बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात कई हुई।

0: बुजुर्ग को बच्चे को जरूरत पड़े और आप देखने की जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं चट्टी नहीं दूं, चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक दिया है। मैं तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करना है, आईन के दायरे में रहकर करना है।
1: वफ़ाक एल पैसा चटी न पर आइनी जिम्मेवारी है। वफ़ाक टिन साल ताइम फंड्स डींदी एन एफ सी के फार्मूला में तब्दीली भी गौर हेठा है, पर फैसलो इतफाक राय से थी सके तो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे वे वजीर वाद अली शाह है तो मुश्किल वक्त में सूबन मुल्क के खातिर वफाक के सपोर्ट कर वफाक के मदद दियण लाय सूबन का न का कीमत जरूर अदा कई है। सिंध हुकूमत आइनी हक इस्तेमाल कदे मुल्की दिफा लाय पैसा डेना बजट में 300 अरब रुपये के लगभग असारो है। सिंध के वफाक का 2,263 अरब मिलंदा, सूबाई हदब 456 अरब रखियो है। सरकारी नौकरियों ते मानुन जो दारोमदार घटाण चाहूं था, निजी शोबे के हथी देई रहा है।
0: मैंने ये कहा था नहीं, 10 साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने वोट उठाया था जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। और ये बातें जरूर आप लोग करेंगे ना यार, इसके बगैर है क्या जिंदगी में मजा? तो मुझे नहीं, हकीकतन नहीं पता, ठीक है। मुझे उस दिन कहा गया था, कुछ नाम लिए गए, मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही टीज कर दिया, इसलिए कि जो 4 नाम उन्होंने लिए थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जियाला अपनी लीडरशिप के, तो वो ऐसी बात नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे का करते जिससे मुझे खतरा हो, मैं शायद करता इनसे कोई खतरा नहीं है।
1: वे वजीर तब्दीली वाली इन खबरों के अफवाह करार दे छो। मुराद अली शाह है मुझी तब्दीली वाली खबरों 10 साल का हली रही हैं, खबरों के पकड़े रो है खबर ना है। सामू इंदर 4 नाला पीपल्स पार्टी के जालन जहां चैन मां मुख्य खतरो ना है, करप्शन जो मसलो मौजूद है, खबर पवन से कार्रवाई भी कर रहा हूं। कुछ खराब पाणुन के करे सजो निज़ाम खराब थियण न डींदी। यूनिवर्सिटी रोड की तामीर में देर असांजी बदकिस्मती ठेकेदार की ना अहली है।

0: सेनेट में नए माली साल जी बजट ते बहस मुकम्मल, ऐवान 123 सिफारिशन जी मंजूरी रही सरी। वज़ीर आज़म जी स्पोर्ट्स एरिनाज ए ट्रेनिंग सेंटर्स मनसूबे के PSDP में शामिल न करण जी सिफारिश। पाक ईरान वापार आडो कानूनी रंडकू खत्म करण में ए तफ्तान बॉर्डर ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण जी सिफारिश भी कई वही। तरक्याती मनसूबन टैक्स अदारन औरतन जी फलाह ए माहौलियाती तहफ़ बाबत कदम करण ते ज़ोर भरियो। कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन के भी महफूज इलाकन मां गुजरण जी सिफारिश।
1: बिल पेश थियो को भी बिल हों टेबल थी हुकूमती इतादी जो सलाह मशूरे से ही अना पेश थियो अने बेस भी सेनेट में भी वो उन बाद इन मामलात के डिठो वो फिलहाल तो कुछ न था चाहिए।
2: ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जायदाद के ऊपर वैसे ही कब्जा कर लिया जाएगा, इट्स पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा तो ये लोग जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में आपके पीछे ये अवामी नुमाइंदे हैं, कल इन्होंने अवाम में जाना होता है। इन्होंने
3: इनको वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो उनको याद रहेगा। ये अपना अफसर भेजे तो सही ना, इनको लग पता जाएगा।
4: तरह का जो कानून है ये कॉन्फिस्केटरी भी है, ये प्यूनिटिव भी है, और ये किसी की जायदाद आप उसकी मर्जी के बगैर और उसको बिना उसके यानी मुआवजा दिए हुए, मुआवजा भी वो जो वो तस्ली एक्सेप्ट करे, आप किसी की जायदाद उससे नहीं छीन सकते ना।
0: वफाकी हुकूमत टेली कम्युनिकेशन बिल पार्लियामेंट में पेश कर छो। बिल के मतन तहत निजी कंपनियों प्राइवेट मानून का मिल्कियतू हासिल कर सकंदियों। शहरी निजी कंपनीज के पसंद ईंदड़ मिल्कियत विक्रो करण जा पाबंद हुंदा। पब्लिक पार्क से भी निजी कंपनीज के हक हासिल थी वेंदा। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, लतीफ कोसो, शानदाना गुलजार ए बेन केटी न्यूज से गलंदे अड़ो बिल त शहरियत के भी खिलाफ हों, कैंकी भी मिल्कियत मर्जी बिना मुआवजे वी नी सकते। हुकूमत जो अड़ो बिल कब्जे के हथी डी कब्जा माफिया हलण न डींदी। हुकूमत तकरारी बिल पास कराए न सकंदी। सिंध में पानी की शदीद कोट ए बदमनी खिलाफ मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा। वारह तालुके में जरई पानी की कोट ए बदमनी खिलाफ सवे मानून एहतजाजी रैली कढ़ी नटण उस में धरणो हयो। कोरबा में अवामी तहरीक के मरकजी सट ते सिंध में पानी की हथरादू कोट इम्कानी 28 तरमीम न्याणियों के कतलाम महंगाई ए मनशियात खिलाफ रैली। चरवार ए परपासे में पानी कोट खिलाफ जस्कम जो पैदल मार्च। मीरपुर बठोरो ए मांझन तालुके में पानी कोट खिलाफ एहतजाज किया।

कंदकोट में 24 का वधिक डोहारी हथियार पिटा करे पुलिस आड़ो पेश। डोहारी फकीर अली, हसन शेख, फैस मोहम्मद चंद्राणी, जीवन मलिक ए सईदू गोलो भी शामिल। पुलिस मूजिब डोहारी फकीर अली, हसन शेख मथा 50 लख इनाम रखियल हो। डोहारियन मथा अगवापुर, धाड़न ए मुकाबलन जा केस दाखिल हुआ। डोहारियन के जेल मोकिल वो। करप्शन मकानी खाते में मुख्तलिफ उहिदनि ते रहंदड़ इमरान सियाल खे तलब करे वरितो। ॿिए ज़िले में मुक़ररी ते पाबंदी बावजूद इमरान सियाल म्यूनिसिपल आफिसर किंगरी ऐं टाउन आफिसर पारां मुक़ररु थियल। ज़रियनि मूजिब इमरान सियाल मथां मुबैना तौर 20 करोड़ खां वधीक करप्शन जा इल्ज़ाम आहिनि। मथस जाली नौकरियुनि जा आर्डर ॾियण, बैंक ट्रांज़ेक्शन लेटर ठाहिण ऐं नौकरी ॾियण लाइ जाली ज्वाइनिंग ॾियण जा बि इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ऐं मकानी खाते जे आफिसरनि पारां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तलब करण बावजूद इमरान सियाल पेश न थियो। कराची ट्रांसपोर्ट इतिहाद शहर में अणॼातल मुदे ताईं हड़ताल जो ऐलान करे छॾियो। कराची ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे अॻवाणनि जो चवणु आहे त ई चालान जा घरा ॾंड घटाया वञनि। ई चालान हुजण बावजूद मेन्युअल चालान जो सिलसिलो बि जारी आहे। तेल जी क़ीमतनि में वाद बाद किराया न वधाइण जी शर्त ते ऐलानियल सब्सिडी अॼु ताईं न मिली आहे।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान विच में पहिरियों भेरो राब्तो। वज़ीर आज़म हाउस जी पधराई पहुचे ॿिन्ही अॻवाननि विच में 30 मिंटनि ताईं ॻाल्हि ॿोल जारी रही। वज़ीर आज़म अमन माहिदे ते ईरान जे सही करण वारे फ़ैसिले जी साराह कंदे चयो त ही तारीख़ी माहिदो ख़िते में अमन जे क़याम ऐं ईरानी क़ौम जे नए सिर जोड़जक में मददगार साबित थींदो। ईरानी सदर अमन माहिदे में किरदार अदा करण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जा थोरा मञिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो स्विट्ज़रलैंड वारो दौरो मुलतवी। सिफारती ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म खे अॼु स्विट्ज़रलैंड वञणो हो, पर हाणे इहो दौरो मुलतवी कयो वियो आहे। पाकिस्तान जी कोशिशनि रंग लाथो। अमरीका ऐं ईरान तय थियल मफ़ामती यादाश्त नामे ते सहियूं करे छॾियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 20 साल तौर तारीख़ी इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे ते सही कई। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप फ्रांस ऐं ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान तेहरान में मफ़ामती यादाश्त नामे ते इलेक्ट्रॉनिक सहियूं कयूं। अमरीकी ऐं ईरानी सदर खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 40 जी हैसियत में मफ़ामती यादाश्त ते सही करे छॾी। वज़ीर आज़म चयो आहे त आला सतह ते मुआदे ते सहियूं थियण मां साबित आहे त धुरियूं तकरार जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहिनि। मफ़ामती यादाश्त फौरी तौर लागू हूंदी। ईरान आपना हुर्मुस खे खोलींदो ऐं अमरीका बहिरी नाकाबंदी ख़तम कंदो। तकरार जो पुरअमन हल कढण ते सदर ट्रंप खे मुबारक ॾियण सां गॾु भेटा पेश कयां थो। ईरानी क़यादत खे बि अमन लाइ क़दम खणण ते ॾिसां थो। अमल में कतर, सऊदी अरब, तुर्की ऐं मिस्र जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी महिनत ऐं किरदार सबबि इलाइक़े में इस्तेहकाम आयो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल धुरीन खे मुआदे ताईं पहुचण में किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी अमरीका ऐं ईरान में शुरूआती मुआदो थियण जी आजिया कंदे चयो आहे त फेबरवरी में शुरू थियल तकरार ख़ते समेत समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। उमीद आहे त ॿीहर अहिड़ी सूरत हाल पैदा न थींदी। मुल्क हाणे अवामी मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾींदा। बिलावल भुटो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान खे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरीन खे एहतजाज ख़तम करण ऐं वापसि ॻाल्हियूं करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडनि में हिसो वठण जो बि ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर खे बि नओं मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणे सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन खणणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियण न ॾींदासीं। मुआजरनि जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते ख़तम नथियूं करे सघजनि। घणो थियो, हाणे एहतजाज ख़तम कयो। एक्शन कमेटी पहिरें मुआहिदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे उन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए पियो।

0: और आप देख रहे हैं कि जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, ये दूर चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक दिया है। तो मैं कहूँ हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करना है, आईन के दायरे में रहकर करना है।
1: वफ़ाक ॾिनल पैसा चटी न पराइणी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक 3 सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं ऐं NFC जे फार्मूला में तब्दीली बि उहो रेट आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ी राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक खे सपोर्ट कयो, वफ़ाक खे मदद ॾियण लाइ सूबनि का क़ीमत ज़रूर अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आइनी हक़ इस्तेमाल कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना, बजट में 300 अरब रुपियनि जे लॻभॻि असारो आहे। के वफ़ाक खां 2263 अरब मिलंदा, सूबाई हदफ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं।

0: पता नहीं है कि क्या क्यों ये बातें, मैंने ये कहा था नहीं 10 साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने वोट उठाया था जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। और ये बातें जरूर आप लोग करेंगे ना यार, इसके बगैर है क्या जिंदगी में मजा? तो मुझे नहीं, हकीकतन नहीं पता, ठीक है। मुझे उस दिन कहा गया था कुछ नाम लिए गए, मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही टीज कर दिया, इसलिए कि जो 4 नाम उन्होंने लिए थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जियाला अपनी लीडरशिप के, तो वो ऐसे ऐसी बात नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे का करते जिससे मुझे खतरा हो, मैं शायद करता इनसे कोई खतरा नहीं है।
1: अरे वजीर तब्दीली वारियन खबरन के अफवाह करार ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त मुंहिंजी तब्दीली वारियूं ख़बरूं 10 सालनि खां हली रहियूं आहिनि, ख़बरूं केरु पखेड़े रहियो आहे ख़बर न आहे। साम्हूं ईंदड़ 4 नाला पीपल्स पार्टी जे जालनि जा आहिनि, चइनि मां मूंखे ख़तरो न आहे। करप्शन जो मसलो मौजूदु आहे, ख़बर पवण ते कारवायूं बि करे रहिया आहियूं। कुझु ख़राब माण्हुनि जे करे सॼो निज़ाम ख़राब थियण न ॾींदासीं। यूनिवर्सिटी रोड जी तामीर में देर असांजी बदकिस्मती ऐं ठेकेदार जी नाअहली आहे।
2: बिल पेश थियो आहे ऐं अञा को बि बिल हूंदो आहे टेबल थींदो आहे त हुकूमती इतादी जेको आहिनि हुननि सां सलाह मशवरे सां ई थींदो आहे। अञा पेश थियो आहे, अञा हिन ते बेस बि थींदी ऐं सेनेट में बि वेंदो, हुन खां बाद हिन मामलात खे ॾिठो वेंदो। फिलहाल त कुछ न था चई सघूं।
3: ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जायदाद के ऊपर वैसे ही कब्जा कर लिया जाएगा, इट्स पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा तो ये लोग जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में आपके पीछे, ये अवामी नुमाइंदे हैं, कल इन्होंने अवाम में जाना होता है। इन्होंने
4: इनको वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो उनको याद रहेगा, ये अपना अफसर भेजे तो सही ना, इनको लग पता जाएगा।
5: तरह का जो कानून है ये कॉन्फिस्केटरी भी है, ये प्यूनिटिव भी है, और ये किसी की जायदाद आप उसकी मर्जी के बगैर और उसको बिना उसके यानी मुआवजा दिए हुए, मुआवजा भी वो जो वो तस्ली एक्सेप्ट करें, आप किसी की जायदाद उससे नहीं छीन सकते ना।
1: वफ़ाक़ी हुकूमत टेली कम्युनिकेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करे छॾियो। बिल जे मतन तहत निजी कंपनियूं प्राइवेट माण्हुनि खां मिल्कियतूं हासिल करे सघंदियूं। शहरी निजी कंपनीज़ खे पसंदि ईंदड़ मिल्कियत विकिरो करण जा पाबंद हूंदा। पब्लिक पार्क ते बि निजी कंपनीज़ खे हक़ हासिल थी वेंदा। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, लतीफ़ कोसो, शानदाना गुलज़ार ऐं ॿियनि KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त अहिड़ो बिल त शरीयत जे बि ख़िलाफ़ हूंदो। कंहिंजी बि मिल्कियत मर्ज़ी बिना मुआवज़े वठी न थी सघिजे। हुकूमत जो अहिड़ो बिल।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौके पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कई वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आए जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
1: सुनते रहो GAFM 90.8